लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म हरियाली और रास्ता से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, पैसा हाथ की मैल है, पर फिर भी लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं। जरूरत के अनुसार पैसा जरूर कमाइए, पर उसके लिए पागल मत होइए। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म लावारिस से ये गीत।

नर्तकी फिल्म से आशा भोसले की आवाज में ये गीत आप सुन रहे हैं। इसी के साथ ही भोर सुहानी कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को आज्ञा दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर और हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

0: ఆకాశవాణి సమయం 6 గంటలు కావస్తుంది. ఇప్పుడు హిందీలో వార్తలు వింటారు, అనంతరం 6:05 ఆంగ్లంలో వార్తలు వింటారు.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए. श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने. परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया. इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है. विशेष पहल के तहत युद्ध पोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है. प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी. श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे. भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है. हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है. श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी. इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है.
2: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है. भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहाँ समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहाँ हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहाँ हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले.
1: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया. प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की. उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं. ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इनक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे. ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के

That was Wish You Were Here. Well, you have been hanging out for a break, getting through the busy last weeks of work or class. Yes, so it was a long weekend we had. So you're finally ready to relax, and then tiredness descends. You feel the tickle in your throat, and you realize that you're getting sick. Hota hai na? So we breathe and we live work every day. और जब आप खुद को आराम करने के लिए कुछ दिन भी देते हैं, तो देन बाद में पता चलता है कि कुछ और ही हो रहा है ना, कुछ और रियलाइजेशन होता है. सो व्हाई डज दिस ऑलवेज सीम टू हैपन जस्ट इन टाइम फॉर द हॉलीडे और द वीकेंड? दैट इज समथिंग कॉल्ड लेट डाउन इफेक्ट, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लीजियर सिकनेस. तो ये क्या वाकई में रियल है? यस. तो जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है यार होता है. तो ये जिस तरह से होता है और कैसे होता है और क्यों होता है, इसके लिए बहुत बड़ी थीरी है. बट ये थीरी ये तो कहती है कि जब भी हम छुट्टी लेते हैं, एक फिनोमिना होता है कि जहाँ पर हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जब वापस आते हैं या तो गला खराब हो जाता है, या तो तबीयत खराब हो जाती है, या तो बुखार आ जाता है. तो मैंने इसके बारे

थोड़ा सा जानेंगे कि वाई दिस सिम्टम्स हैपन. हेडेक हो सकता है, टायर्डनेस, कोल्ड, फ्लू, मसल पेन, नौशिया, एवरीथिंग. तो ये जो सिम्टम्स है इसके साथ साथ होता क्या है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे. लेकिन हाँ, ये सबके साथ नहीं होता है, ये सबके साथ नहीं होता है, कुछ लोगों के साथ होता है और मोस्टली होता है जहां पर हम अपने आप को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं. तो वेल, इसके बारे में जानेंगे, विल टॉक अबाउट इट. एक स्ट्रेस लेवल, एक माइग्रेन लेवल, ये सब कुछ जानेंगे. तो वेल, आप सुनते रहिए आपकी जमीला को. नमस्ते, हेलो, आदाब, प्यार.

0: FM Rainbow 101.9
1: एंड इट्स म्यूजिकली योर्स, और आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब आपकी जमीला के साथ। एंड वाले सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं लीशियर सिकनेस की। सो वी वर टॉकिंग अबाउट वी लिव एंड वी ब्रीथ वर्क एवरी डे, लेकिन जब हमें आराम करने की सोच होती है तो उसके बाद में जो सिकनेस आ जाता है, यस ये रियल है। सिम्टम्स लाइक हेडेक हो गया, मसल पेन हो गया, फैटिक हो गया, साइकोलॉजिकल रिपरकशंस हो गए, जैसे कि फीलिंग्स ऑफ टेंशन एंड अनईज, इवन काम से दूर रहने का भी टेंशन जो रहता है, ये सारे दबाव हमें बहुत दूर तक लेके जाते हैं। तो हम लोग वो स्टेबिलिटी नहीं ला पाते हैं, तो जिसके वजह से हमारा हेल्थ खराब होना शुरू हो जाता है। तो हाँ, वेकेशन तो बना लिया, बट देन नर्वस सिस्टम जो है वो उतना सिंपथाइज नहीं हो पाता। सारे स्ट्रेस एक्टिविटीज चलते ही रहते हैं, हारमोन्स में कहीं ना कहीं ये एक्टिविटीज इतने कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देते हैं कि देन हमारा इम्यून सिस्टम उसे टॉलरेट नहीं कर पाता। तो आफ्टर द लॉन्ग ब्रेक या वीकेंड हम बीमार हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, इसके लिए बहुत स्ट्रेस रहता है, और इन चीज़ों से लड़ने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक तो मोटिवेशन चाहिए और साथ ही साथ वो जो रेजिस्टेंस है वो चाहिए। तो ये जो हम आसपास लोगों से देखते हैं या फिर जो क्राउडेड प्लेस में जाते हैं, तो हम थोड़ा सा सफोकेट फील करते हैं, मे बी बिकॉज कि हम अंदर से स्ट्रेस्ड हैं, हम अंदर से उतना नहीं लड़ पाते हैं जितना हमारा इम्यून सिस्टम करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें रश आउट होकर बाहर आ जाते हैं। हाँ, वी नीड मेंटल, हम सोचते हैं कि हमें ब्रेक लेना चाहिए, वेकेशन में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाता है क्योंकि हम कहीं ना कहीं उसके लिए तैयार नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस ट्रिगर्ड होती हैं। तो लाइफ स्टाइल चेंजेस हो जाते हैं, वाई वीकेंड में वीकडे का पूरा रूटीन अलग रहता है एंड देन वेकेशन का रूटीन अलग हो जाता है। तो वो जब अलग हो जाता है तो उसमें बहुत सारे कोई स्पेसिफिक क्लियर कॉज नहीं है कि बिकॉज ऑफ दिस दिस हैपेंस। नो, इट इज वेरी जेनरिक, कभी हो जाता है कभी नहीं हो जाता है। तो इट्स लाइक नो, कभी लेट डाउन हेडेक्स हो जाएंगे, कभी बहुत सारा नौशिया हो जाएगा, 24 आवर्स तक सब कुछ ठीक हो जाता है, या तो कभी माइग्रेन इतना हाई हो जाता है कि वी कांट लेट ऑफ। सो दीज थिंग्स आर देयर, जो ट्रांसिशन होता है वर्किंग प्लेस से एंड देन नॉन वर्किंग, यहाँ पे जहाँ पे बहुत बिंदास रहते हैं वहाँ पर, बिकॉज वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, उसका भी इफेक्ट रहता है। हम उन लोगों को टॉलरेट नहीं कर पाते, मे बी बिकॉज ऑफ वायरस हो गया, या फिर वो जो आसपास का माहौल है उन्हें हम अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो देयर द इम्यून बूस्ट हैज टू बी डन। तो वो रिलीफ जब मिलेगा वो इवेंचुअली आदत होने, बचपन में कहा जाता है देखो कि जितना एक्सपोजर दिया जाएगा उतना अच्छा है, सो दैट आसपास के माहौल से मिलजुल जाए। तो आज की डेट में भी यही एक बहुत ही वर्क प्लेस रिलेटेड स्ट्रेस हो गया या फिर घर का स्ट्रेस हो गया, कोई भी चीज़ों से अगर हम सोचते हैं कि हाँ थोड़े दिनों के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं, तो उसका इफेक्ट बाहर बाद में दिखता है कि यार हेडेक हो गया, तबीयत ठीक नहीं है, मसल पेन, ये वो। तो वो जो गिल्ट है वर्क का वो भी कैरी होता है। तो मेक श्योर दैट कि अगर आप में से किसी को ऐसा होता है तो प्लीज़ कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मेडिटेशन हो गया, माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन टेक्निक ही है, इसके लिए कोई दवाई ववाई नहीं चलेगी, बस मेडिटेशन और माइंडफुलनेस रिलैक्स टेक्निक की भाई काम थोड़ी देर के बाद में अब अपना लाइफ। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम करेंगे तो द गिल्ट को थोड़ा सा दूर रखेंगे या फिर अपने आप से कुछ वक्त के लिए अलग रखेंगे, तो यस वी कैन डेफिनेटली एन्जॉय द

That was Rubaroo Zindagi Toh. जी हाँ, रंग बसंती तो एक खूबसूरत सा गाना. एंड नाउ इट्स 10:55 एट स्टूडियो क्लॉक. तो हम 11 बजे के बाद न्यूज़ के खबरों के बाद में हम फिर से आपसे जुड़ेंगे, जहाँ पर व्हेन आई से दैट इट कांट बी हेल्प्ड और नथिंग कैन बी डन, सो दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स द माइंडफुल एक्सेप्टेंस ऑफ थिंग्स कंप्लीटली आउटसाइड योर कंट्रोल. है ना, हमारे कंट्रोल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं हो सकती. अननेसेसरी स्ट्रगल हम करते ही रहते हैं, हम अपने आप को पुश करते रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अपने हाथ में नहीं है. तो वेल, इस दिल की बात और इस बावरे मन की बात तो हम जाने ही. आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद.

जी हाँ, दिल लकी लगा के तो देखो, नॉट विथ आंसर्स बट विथ एक्सेप्टेंस। हम सभी के लाइफ में ऐसे बहुत सिचुएशंस आते हैं, हम बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, लेकिन ज़िंदगी में एक ऐसा मोड ले ही आती है जहाँ पर हम अपनी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या हो गया, चाहे वो कुछ टूट गया हो, दिल टूट गया हो, या फिर करियर में कहीं ब्रेक आ गया हो, पूरा सब कुछ है ना अप एंड डाउन हो गया, अस्त व्यस्त हो जाता है, मतलब लाइक जहाँ सोचा भी नहीं है वो भी हो जाता है। तो इस चीज़ों में हमें सिर्फ और सिर्फ शोगानाई को याद करना है, एज आई मेंशन कि ये एक जापानीज फ्रेज है। तो हाँ, ये एक ऐसा फ्रेज है जो आज के दौर के लिए, हर सिचुएशन के लिए जहाँ पर हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि हम उसे संभालने के लिए, संवारने के लिए बहुत सारा एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, गुस्सा लाते हैं, सिचुएशन को और ख़राब कर देते हैं। अगर मौसम ख़राब है तो इसमें हमारा क्या है, कुछ भी नहीं कर सकते, तो रादर उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर ट्रेन मिस हो गई है तो हाँ, ये ख्याल रखना चाहिए कि अगली बार मिस ना हो, लेकिन उस सिचुएशन को चिल्ला कर, एनर्जी को वेस्ट कर कर, लड़ कर, पुकार कर कोई फायदा नहीं।

एक्सेप्टिंग द रियलिटी. तो जहां पर हम अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, उससे लड़ते नहीं हैं, उससे झगड़ते नहीं हैं, तो नेचर भी कहीं ना कहीं हमें उसे अपने साथ ले आता है. जी हाँ, किस तरह से जब हम एक्सेप्टेंस मोड में आ जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि हाँ, ये सब कुछ हो रहा है, विच आई कांट डू इट, क्योंकि हम अपने आप से नहीं बने हैं, हम हमें बनाया गया है, हम अलग हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ कंट्रोल करेंगे. तो ये जो कंट्रोल करने का जो थॉट रहता है, वो इंसान को खोखला करता है. जहाँ पर हम शिकायतें करते रहते हैं कि बोलते ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो वहाँ पर हमारा इनर पीस भी ख़त्म हो रहा है. हम आउटसाइड से कंट्रोल हो रहे हैं, हम अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते हैं. लेकिन हाँ, बाहर ऐसी भी टेक्नोलॉजी है, ऐसे भी टर्म्स है, ऐसे भी फ्रेसेस है जो कहता है कि भाई आप शांत रहिए, सेरेनिटी में रहे. तो वेस्टर्न सेरेनिटी में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक प्रेयर भी होता है, जहाँ पर बताया जाता है कि इट इज़ व्हाट इट इज़, दैट्स ऑल. तो ये जो प्रेयर है, हम हमारे इंडियंस में भी है, ये कल्चर है, लेकिन हम उसे अपनाते नहीं हैं. तो वो एक्सेप्ट रियलिटी बहुत ज़रूरी है. वेल, कल्चरल डिबेट तो हर जगह रहेगा, लेकिन हाँ, प्लेटफॉर्म तो यही कहता है कि भाई कुछ भी हो जाए, वहाँ पे कंप्लेंट्स ना करते हुए, स्ट्रेस को थोड़ा सा रिड्यूस करते हुए, डिस्कशंस नहीं लगाते हुए, मेंटल रेजिलेंस ना करते हुए, सब कुछ हाई वैल्यूड में ना करते, हर जहाँ पर हम भागते जा रहे हैं कुछ ना कुछ पाने के लिए. हाँ, वो पाने की जो एक्सपेक्टेशन है, उसकी भी एक लिमिट होती है, उसका भी एक दायरा होता है. अगर वो नहीं मिल रहा है, ज़िद पे, चाहे वो प्यार हो जाए, जिस तरह से क्राइम रेट बढ़ते जा रहे हैं, ज़िद है ये और कुछ नहीं है. मोबाइल्स के साथ हो जाए, हर किसी सोशल मीडिया पे ज़िद पे ही हम भाग रहे हैं. तो वहाँ पर अगर हम इस फ्रेज़ को अपनाएंगे, तो इट कांट बी हेल्प्ड और नथिंग कैन बी डन. सो वी हैव टू एक्सेप्ट दिस एंड लेट इट गो. वेल, नेक्स्ट गाना सुनते हैं. आप हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए. नमस्ते, हेलो, आदाब.

0: जी हाँ, दैट वॉज ही आसमानी और जो लोगों को समझ नहीं आती. वेल, विलफुल एक्सेप्टेंस ऑफ थिंग्स दैट यू कैन नॉट चेंज इज वॉट इज एम्बॉयडेड विद द वर्ड विद द फ्रेज शॉगनाई. वेल, एक बहुत ही फेमस बुक है, सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल. स्टीफन और क्वाय की ये बुक है जहाँ पे ही एक्चुअली डिस्टिंग्विश प्रोएक्टिव पीपल के बारे में, हु फोकस ऑन व्हाट दे कैन डू एंड कैन इन्फ्लुएंस. मतलब एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है. रिएक्टिव पीपल हु फोकस देयर एनर्जी ऑन थिंग्स बियॉन्ड देयर कंट्रोल, दैट इज सर्कल ऑफ कंसर्न. तो जिस उस बुक में क्लियरली लिखा गया है कि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्कल ऑफ कंसर्न. तो वेल, ये फ्रेज भी यही कहता है कि है ना, हमें एक्नॉलेज और एक्सेप्टेंस करना चाहिए व्हाट इज आउटसाइड आर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड मेकिंग पीस विद इट. वेल, लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ओवरवेलमिंग हो जाती है कभी कभी लाइफ. लेकिन हाँ, जो प्रेशर है, एक्सपेक्टेशन है, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन सब को हम इतना डिफिकल्ट क्यों बना लेते हैं. हाँ, कितना भी कह लें, लेकिन हाँ, हो ही जाता है. हम इतने परफेक्ट हो नहीं सकते. जेन्यूनली तो यही बात है कि हाँ, बर्डन जो है एक्सपेक्टेशन से ही बनती है. और वो जो एक्सपेक्टेशन है, हम कितना भी चाहें, ये सोच, वरिंग, कंप्लेनिंग और बहुत सारी चीज़ें, कंडीशंस बाय सोसाइटी, हम कितना भी कंट्रोल करना चाहें, लेकिन हम इन्फ्लुएंस हो ही जाते हैं. लेकिन हाँ, एक इरेशनल और यूजलेस चीज़ों को अगर हम उतना इंपॉर्टेंस देने लगेंगे, तो फिर हमारी पहचान ही क्या रह जाती है. वेल, सोचने वाली बात तो है, लेकिन हाँ, हम इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं और हम इसे थोड़ा माइंडफुली हैंडल कर सकते हैं. वेल, शनाई के बारे में इतना ही. इट्स 11:45 एट स्टूडियो क्लॉक और आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब, आपकी जमीला के साथ. हम अभी गाने सुनेंगे, गानों के साथ साथ ढेर सारी बातें भी होगी. वेल, इसी बीच में मैंने बशीर बद्र जी की एक गज़ल पढ़ी है. उनकी किताब मैं इस रिसेंट टाइम्स में पढ़ रही हूँ. रिसेंटली 28 मई 2026 को उनका इंतकाल हो चुका है. वेल, उनकी जो कविताएं हैं, उनकी जो गज़ल है, वो बहुत ही यूनिक और सिंपल है. उनमें से एक गज़ल मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी. वेल, बात तो यही है कि जब कहते हैं ना कि हमारे पास सब कुछ होता है, जब सब कुछ होता है तो हम उसकी कदर नहीं करते, लेकिन जब हमारे साथ एक एक छूटने लगता है, तब हमें एहसास होता है कि ये वाकई में बहुत ज़रूरी था. तो वेल, इसमें इनकी इनकी किताबों में, इनके गज़लों में, इनकी कविताओं में बहुत सारी बातें लिखी, बहुत ही डीप मीनिंग है, जहाँ पे सिंपल लिविंग की बात की गई है कि हम कितनी भी कोशिश कर ले, अगर हमारा ईमान सही नहीं, हमारी नीयत सही नहीं है, तो खुदा भी साथ नहीं देता. और अगर हम उस चीज़ की वैल्यू नहीं कर पाए, तो खुदा अपने आप सब चीज़ें छीनने लगता है. वैसे बहुत सारी बातें हैं. वेल, मैं खबरों के बाद में, न्यूज़ के बाद में, जहाँ पर हम पुराने गाने सुनेंगे, उस वक्त मैं आपको ये एक छोटा सा एक पैराग्राफ ही समझ लीजिए, इसके मैं पूरा सुनाऊंगी मैं आपको, जो मुझे बहुत अच्छा लगा है. तो वेल, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद.
1: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026 జూన్ 25 నుంచి జూలై 24 వరకు గణన దశ. ఈ దశలో బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఇంటింటికి వచ్చి ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ ని ఇస్తారు. ఓటర్ల ఫామ్ ను పూర్తి చేసి తిరిగి సంబంధిత బిఎల్ఓకు అందజేయాలి. ఆన్లైన్ లో ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ సబ్మిట్ చేయాలనుకునే వారు voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. గుర్తుంచుకోండి, ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ పూర్తి చేసి తిరిగిచ్చిన వారి పేర్లు మాత్రమే ముసాయిదా జాబితాలో చేర్చబడతాయి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి తెలంగాణ.

समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। समारोह में आयोजित परेड में भारतीय नौसेना और थलसेना की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS रिक्षक विक्टोरिया में तैनात थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र

0: पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शिलू नागू की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीर्थ यात्रा के आधिकारिक प्रारंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था, काफिले की आवाजाही और समग्र तैयारियों की समीक्षा की गई। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाय नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 152 अंक गिरकर 76,948 पर और निफ्टी 26 अंक कम होकर 24,030 पर आ गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of independence of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honour, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honour. An Indian marching contingent comprising Navy and Army teams participated in the parade. An Indian naval band also formed part of the Indian marching unit, underlining the close and special India-Seychelles partnership. In a special gesture, INS Tarkash and INS Ikshak were docked at Port Victoria, highlighting India's long-standing friendship with Seychelles. PM Modi conveyed India's warm wishes to the people of Seychelles on this historic occasion. Prime Minister Modi was conferred the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction, for leadership in environmental conservation and sustainable development. President Draupadi Murmu will present gallantry awards at the second Defence Investiture Ceremony of 2026 at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. The President will confer gallantry awards to personnel of the Defence Forces, Central Armed Police Forces and State UT Police at 5 p.m. These awards are given away in recognition of exceptional acts of bravery by personnel of the Armed Forces, Central Armed Police Forces and other security agencies. The Supreme Court today refused an urgent hearing on a PIL seeking a court-monitored probe and forensic audit into alleged financial irregularities and donations received by the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust. The bench of Justices M.M. Sundaresh and Sheel Nagu questioned the urgency and directed that the plea be listed after the court reopens following the summer vacation. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal is leading a high-level Indian business delegation to Athens in Greece after concluding his visit to the United Kingdom with a focus on strengthening trade, investment and strategic economic cooperation. The Commerce and Industry Ministry said during the visit,

वेल, 12:11 एट स्टूडियो क्लॉक, और आप सुन रहे हैं आपकी जमीला को आकाशवाणी हैदराबाद पे। तो वेल दोस्तों, इस सेगमेंट में हम पुराने गाने सुनेंगे, सदाबहार गाने सुनेंगे। तो चलिए सबसे पहले आगाज़ करते हैं 1995 में रिलीज़ हुई एक हिट फिल्म, जो कि उस दौर की बहुत ही उम्दा फिल्मों में से एक थी। और इस फिल्म ने, हाँ, एक उतना कमर्शियली, मतलब आज के दौर पर देखा जाए तो हाँ 38 करोड़ या 20-30 करोड़ का कमर्शियल हिट रहा है, लेकिन हाँ आजकल तो 100 करोड़ की फिल्म बन रही है। लेकिन ये कमर्शियल सक्सेस मानी गई थी 1995 में। फिल्म के दो किरदार आज इतने सुलझे हुए हैं, और एक कहा जाता है ना कि वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। जी, मैं बात कर रही हूँ बॉबी देओल की और ट्विंकल खन्ना की। तो वेल, बहुत सारे लिसनर्स को अंदाजा हो गया होगा कि मैं किस फिल्म की बात कर रही हूँ। जी हाँ, फिल्म बरसात की। ट्विंकल खन्ना और बॉबी देओल इस फिल्म पे डेब्यू किया था उन्होंने, और फिल्म म्यूजिक हिट रही। इनके परफॉर्मेंस इतनी ऑनदा रहे कि लोगों ने कहा कि केमिस्ट्री, फ्रेश स्क्रीन अपील इतना

बेहतरीन था। वो एक ड्राइविंग फोर्स रहा, दोनों का काम करने का अंदाज बहुत अच्छा था। कहते हैं ना कि फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी उन गानों से पता चल जाता है, तो वेल गानों की बात की जाए तो बहुत ही एंटिसिपेटेड था कि ये फिल्म बहुत अच्छी रहेगी। तो वेल इस फिल्म का एक गाना जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में एक बेहतरीन गाना है। तो बने रहिए आपकी जमीला के साथ और सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद।

हेलो आदाब, आपकी जमीला के साथ। वेल, हमने बहुत सारी बातें की जहाँ पर हमने एक दूसरे को समझने के साथ साथ सुलझाने की भी कोशिश की। जी हाँ, सबसे बड़ी बात आ जाती है जब मेरे पास एक मैसेज आया है जहाँ पर उन्होंने कहा है कि जिस तरह से आपने जापनीज फ्रेज के बारे में बताया, शोगानाई के बारे में, तो वो जो फ्रेज है कई बार हम किसी एक ऐसे शख्स को छोड़ देते हैं या वो हमसे छूट जाता है या चले जाता है, तो उनकी फौत हो जाती है, तो तब उस लॉस को, उस प्यार को, उस लव को हम कैसे संभालें। ये जो यूनिवर्सल लैंग्वेज रहता है ना दोस्त, जो हम प्यार कहते हैं, जिसे हम अपना कहते हैं, ये बिल्कुल, ये लैंग्वेज पता है हमारे दरमियान में रहती है, लेकिन हाँ, जब वो इंसान हमें छोड़ के चले जाता है, तो ये सिर्फ इंसान के बीच में नहीं, बल्कि ये हर हर लिविंग स्पीसीज के साथ रहता है। ये जो इमोशंस होते हैं, हम सोचते हैं कि बस हम इंसानों के बीच में हैं, नहीं, ये जानवरों के बीच में भी, ये फूल पत्तों के बीच में भी रहता है। जहां पर कुदरत ये चाहती है, ये जताती है कि वो है, और उस है और रहने में जो फासला होता है वो है जिंदगी का। तो जब अगर हम चाहे वो पेट लवर हो जाए, तो उनका कहना है कि उनका एक पेट है जो उनके साथ अब नहीं है, तो वो जो पेट लवर है वो बयान नहीं कर पाते, और जब वो किसी के साथ बयान करने की कोशिश करते हैं तो उसे एक मजाक सा समझ आ जाता है। या फिर किसी का कोई पौधा है जो मुरझा सा गया है, वो किसी से कह नहीं पाता, लेकिन हाँ, वो जुदाई वाकई में ही जुदाई है। तो ये जो इमोशंस है, कंपेनियंस है, गैदरिंग है, हम जो एक्सपीरियंस करते हैं, ये सिर्फ इंसानों के बीच में नहीं है, बल्कि सारे स्पीशीज के साथ होता है, हर हर यूनिक चीज़ के साथ जो कुदरत से जुड़ा हुआ है। तो उसी बात को हम मद्देनजर रखते हुए ये कोशिश तो जरूर कर सकते हैं कि हम सामने वाले को तकलीफ ना दें। जो आज हम महसूस करते हैं कि हर कोई अपने अपने जिंदगी में इतना मसरूफ हो चुका है कि उसे किसी के लिए भी वक्त नहीं है, तो वो क्या खुद के लिए वक्त निकाल पाता है? हाँ, कुछ हद तक निकाल पाता है, एक मतलबी तौर पर, एक कंडीशनल तौर पर वो अपने लिए वक्त निकालता है, लेकिन उस वक्त में ना प्यार की महसूसियत है, ना अपनेपन की झलक है। तो इस झलक को और महसूसपन को जब हम निखारते हैं, तभी एक खूबसूरत सा रिश्ता बनता है। कह रहे हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं, मानते हैं कि आजकल वो प्यार नहीं रहा, वो अंदाज नहीं रहा, वो लोगों में अपनापन नहीं रहेगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक इंसान है, कुदरत है, वो प्यार वैसा ही रहता है, बस समझने की दूरी है और निखारने की दूरी है। तो उस दीवानगी में जो हमें प्यार को महसूस करवाता है, वही कहीं ना कहीं जाके रिश्ता बनता है। हाँ, बोलते हैं ना कि बस ऑन द गो है, हर कुछ मूव ऑन में है, तो कोई मूव ऑन हो जाता है, कोई नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ, जो लव और लॉस का जो लैंग्वेज है वो यूनिवर्सल है, वो कुदरत हमें सिखाता है। वेल, अभी मैं आपको एक खूबसूरत सा गाना सुनाने वाली हूँ, ऐसी दीवानगी, अलका याग्निक और विनोद राठौर की आवाज़ में। वेल, इसके बाद में हमारा फ़ोन इन प्रोग्राम रहेगा जहाँ पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, हम आपको एक टॉपिक देंगे। वेल, टॉपिक से पहले मैं एक और गाना सुनाऊंगी, उस गाने के रिलेटेड ही टॉपिक रहेगा। तो वेल, आप नंबर नोट कर सकते हैं, नंबर है 0402323 0030, 2323481 एंड 2970471। तो आप सुन रहे हैं आपकी जमीला को, बने रहिए आकाशवाणी हैदराबाद पे।

0: FM Rainbow 101.9
1: एंड इट्स म्यूजिकली यस, टाइम हो चुका है हेलो रेनबो का. तो अब मैं जो गाना प्ले करने वाली हूँ इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग, और ऐसे बहुत ही लोगों का ये फेवरेट गाना रहा है. इस गाने के साथ साथ आज का टॉपिक भी है. तो आप दोस्तों मुझे बताइएगा कि है ना, एक ऐसी अरमान रहता है, एक ऐसी ख्वाहिश रहती है जो शिद्दत से आप पाना चाहते हैं, तो वो कौन सा अरमान है आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं. 0402320030 2320 2320 4821 and 2970 4715, जिसके लिए आप आज भी तड़प रहे हैं, खुदा से मांग रहे हैं कि बस वो एक चीज मिल जाए. तो बताइएगा, मेरे साथ शेयर कीजिएगा. आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो.

0: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026 జూన్ 25 నుంచి జూలై 24 వరకు గణన దశ. ఈ దశలో బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఇంటింటికి వచ్చి ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ ని ఇస్తారు. ఓటర్ల ఫామ్ ను పూర్తి చేసి తిరిగి సంబంధిత బిఎల్ఓకు అందజేయాలి. ఆన్లైన్ లో ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ సబ్మిట్ చేయాలనుకునే వారు voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. గుర్తుంచుకోండి, ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ పూర్తి చేసి తిరిగిచ్చిన వారి పేర్లు మాత్రమే ముసాయిదా జాబితాలో చేర్చబడతాయి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి, తెలంగాణ.
1: Well, आप सुन रहे हैं रेनबो. तो जैसे आपने गाना सुना, बस इतना सा ख्वाब है. तो आप बताइए कि आपका ऐसा कौन सा ख्वाब है जो आप चांद तारे सब कुछ तोड़ के लाने के लिए तैयार है. वेल, नंबर है 0402323000 एंड 2324821 एंड 2970475. अभी हमारे साथ एक कॉलर है. हेलो
2: हेलो
3: अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम जी. आपका नाम?
3: जी शेर खान बोल रहा हूँ, तलापट्टा अमनगर से. सभी सुनने वालों को प्यार भरा सलाम आदाब. अल्लाह से दुआ करता हूँ आपको सभी को खुश रखे, आबाद रखे, सेहतमंद रखे हमेशा.
1: जी तो बताइए कि आपकी ऐसी कौन सी ख्वाहिश है, बस इतना सा ख्वाब है. तो आपका ऐसा कोई ख्वाब है जो अभी भी पूरा नहीं हो पाया?
3: जी नहीं, मेरा ख्वाब तो नहीं है. पहले तो मेरी कोशिश है और फिर मेरी दुआ है कि बस मेरी दुनिया और आखिरत कामयाब हो जाए और मैं बस दीनदारी के साथ जिंदा रहूं, खैर और आफियत के साथ जिंदा रहूं और खैर आफियत के साथ, यानी मेरी ईमान पे ही मौत नसीब हो. मैं अल्लाह का एक अच्छा बंदा बन के ही दुनिया में रहूं, अच्छा बंदा बनकर ही मुत्तकी परिवार बन के ही दुनिया से जाऊं. बस दुनिया में तो कितना भी ये ख्वाहिश वो ख्वाहिश ये वो कितना भी कर लो, सब यहीं पे छूटना है. तो मेरी भलाई जिसमें है, मेरी दुनिया और आखिरत की कामयाबी जिसमें है, बस मेरी वही दुआ है अल्लाह से और वही कोशिश है. टूटी फूटी जैसी भी है अल्लाह इसको कामयाब कर दे, बस यही दुआ है.
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया. वेल, बस इनकी तो इतनी सी ख्वाहिश है कि बस इनकी आखिरत सही हो जाए. तो चलिए आप बताइए कि आपकी ऐसी कोई मुराद या ऐसी ख्वाहिश जो आप चाहते हैं कि बस इतनी सी ख्वाहिश है लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है. ऐसे बहुत लोगों के साथ बहुत एक ऐसा ड्रीम रहता है कि बस वो एक मिल जाए ना तो बस. तो वेल, इंसान की फितरत तो बात अलग है कि उसके बाद और आते हैं, लेकिन एट द मोमेंट ऐसा कौन सा ख्वाब है जो आप उसे शिद्दत से पाना चाहते हैं और वो आपको मिल जाए? तो आप मेरे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं. हेलो.
4: हेलो, गुड आफ्टरनून.
1: गुड आफ्टरनून. आपका नाम सर?
4: जी मैं अजहरुद्दीन.
1: जी बोलिए.
4: जी मैडम, कैसे हैं आप?
1: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ, आप बताइए.
4: आप बहुत दिन के बाद में हैं. मैं
1: जी
4: हाँ.
1: जी हाँ,
4: आप मैं दोनों सेम एक ही टाइम पे आए.
1: जी जी जी. देखिए,
4: तो जैसा ये सॉन्ग प्ले करें ना आप, चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया पर चाहूं, सेम टू सेम जैसा पूरा गाना है जैसे वर्ड से वो

0: वेल दैट वाज नशे से चढ़ गई। तो जब दोस्तों जब कहते हैं ना कि कुछ ख्वाहिश होती है, कुछ अरमान होता है, तो बस एक नशा सा हो जाता है। चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने की बात हो जाए या फिर कोई स्पोर्ट हो जहाँ पर अपने आप को परफॉर्म करने की बात हो, तो हर चीज़ के लिए एक नशा होना ज़रूरी है, वो ज़िद ज़रूरी है, चाहे वो स्टेट रैंक लाने की बात हो या जॉब पाने की बात हो। तो हर किसी के कोई ना कोई अरमान तो ज़रूर रहती है, कोई ना कोई ख्वाहिश ज़रूर होती है जो मुद्दतों से पूरी नहीं हो पा रही है। तो वेल आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, क्या पता कि मेरे साथ शेयर करे बाद वो अरमान पूरी हो जाए। वेल नंबर है 2323। बहुत ही हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट दे रही हूँ मैं, नहीं ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है, आप बस मेरे साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपका मन हल्का हो जाए। 2323-0030, 2323-4821-2970-4715। तो ये कॉलर है हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। हेलो हेलो,
1: गुड आफ्टरनून मैडम।
0: गुड आफ्टरनून सर, आपका नाम?
1: मेरा नाम मैडम नरसिम्हा रेड्डी, प्रेमा
0: जी
1: से पेट राजेंद्र नगर।
0: जी बताइए।
1: बहुत दिन के बाद।
0: बहुत दिनों के बाद जी।
1: कैसे हैं मैडम आप?
0: जी मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: एकदम बढ़िया मैडम।
0: जी तो आप क्या कहेंगे,
1: अरमान
0: ऐसी कोई अरमान या ऐसी कोई ख्वाहिश?
1: तो बहुत रहते हैं मैडम। ऐसे तो थोड़े बच्चों का शादी है, घर वो ये सब कुछ हो गया। एक था मेरे जवानी में जो नौकरी मिली थी पुलिस डिपार्टमेंट में,
0: जी
1: और अनएक्सपेक्टेड क्या हुआ, जो हमारे रिश्तेदारों में वो ठीक नहीं रहता पुलिस में जॉब बोले तो वो छोड़ना पड़ा मुझे।
0: ओ
1: हाँ, तो फिर आज लगता है कि कभी कभी सोचता हूँ वो फिर वो दिन आएगा करेंगे तो कम से कम पब्लिक सेवा कर सकते बोल के एक
0: जी
1: अरमान तो मेरे में रहेगा मैडम। वो
0: जी जी
1: अब
0: जी
1: होता नहीं होता पता ना, अभी तो होने का तो चांस ही नहीं है समझो अब तो।
0: ये मतलब आपको मिला था फिर आपने छोड़ दिया, तो वो थोड़ा सा तकलीफ वाली बात हो जाती है।
1: हाँ, तो मतलब वो तो वो अपने रिश्तेदार में बोले थे तो नौकरी ठीक नहीं रहता वो पुलिस का बोले थे, वो छोड़ना पड़ा।
0: जी
1: अब
0: जी
1: तो माहौल देखते रहे तो कभी उन्हें ऐसा करा ऐसा करा तो लगता है कि भाई मेरे को फिर एक मौका मिले तो फिर जाऊंगा बोल के रहता।
0: जी, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।
1: ओके मैडम।
0: चलिए एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: जी, आपका नाम?
1: अभी मेरा नाम सुन रहे हैं।
0: जी बोलिए।
1: आपका जगन्नाथ जी का स्नान स्नान है,
0: हाँ
1: और स्नान जगन्नाथ जी का स्नान पूर्णिमा में मैं जगन्नाथ का प्रार्थना करूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनां, सर्वे भवन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि
0: आपकी
1: पश्यन्तु, मा
0: आवाज
1: कश्चित्
0: क्लियर
1: भवति।
0: नहीं आ रही है, आपसे निवेदन है कि आप हमें दोबारा कॉल कीजिएगा।

0: हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे, एक और कॉलर है उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो।
1: अस्सलाम वालेकुम। खैरियत
0: वालेकुम सलाम
1: मैडम?
0: जी। अलहमदुलिल्लाह।
1: मैं शिकागो को जाके आई गए। मैं आप लोगों को मिस करी बहुत। कहते इंडिया बोली वहाँ,
0: हाँ बहुत खूब
1: ईस्ट
0: बहुत
1: में
0: खूब।
1: वेस्ट
0: हाँ
1: इंडिया बोली।
0: जी जी
1: और
0: जी
1: मेरी कोई ख्वाहिश नहीं आखिरत अच्छी हो बोल के, यही थे। मगर शेर खान भाई शर्मा रहे बोलने आपको। उनकी शादी की ख्वाहिश है और एक उम्रा करने की ख्वाहिश है। दुआ करिए आप लोग, हम बहुत मायूस है। उन्होंने
0: जी,
1: बहुत
0: जरूर हम दुआ
1: तंग
0: करेंगे आप
1: उसमें
0: सब।
1: है बेचारे, नहीं
0: जी
1: बोल सक रहे
0: जी
1: समझो।
0: जी जी
1: वो
0: जी
1: घड़ी बोल रहे थे मेरे को, बोलने वाली घड़ी लाओ अमेरिका में मिलती, रिसर्च करे वो ला के दी। मैं टाइम
0: अच्छा
1: बोलती सो वो
0: अच्छा
1: प्लास्टिक में थी जापान की, तो
0: हाँ हाँ
1: है मेरे को ऐसी होना हम पेने जैसा बोल के वो मंगाए तो मैं ला के दी। वो एक
0: अच्छा
1: ख्वाहिश पूरी हुई उनकी, मगर उम्रा की ख्वाहिश है, शादी की ख्वाहिश है, नहीं
0: जी
1: कर रहे हैं उनके
0: जी
1: लोग।
0: जी
1: सब
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: मुश्किल से 2 टाइम खाना खा के अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं बेचारे।
0: जी
1: दुआ करो उम्रे की, कुछ
0: जी
1: पासपोर्ट
0: जर
1: बनाओ बोल तो भी सुनते नहीं हो ना।
0: जी
1: पासपोर्ट बनाए तो रास्ते खुलते हैं उनके लिए। दुआ करिए आप लोग। अल्लाह
0: जी जी जी ज़रूर ज़रूर। बहुत बहुत
1: हाफिज,
0: शुक्रिया कॉल करने के लिए।
1: अल्लाह
0: अल्लाह
1: हाफिज।
0: हाफिज़। जी हाँ, हमारे सारे लिसनर्स जो शिद्दत से हमें कॉल करते हैं, हमें बताते हैं, तो यस बहुत ही एक अलग तरह का अटैचमेंट है एक दूसरे के साथ। अगर कोई लिसनर कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो उनका इन्फॉर्मेशन भी हमें बता रहे हैं, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और बहुत ही पेशेंसफुली एक कॉलर के इन्फॉर्मेशन लेकर हमें बताना। वेल थैंक यू। एंड इट्स 1:26 एट स्टूडियो क्लॉक। और जैसे मैंने बताया कि हाँ, अरमान तो बहुत होते हैं इंसानों में, लोगों में बहुत, मतलब इंसान की फितरत ही वही है। एक एक लेवल क्रॉस हुआ तो सेकंड लेवल, तो चाहे वो गेम हो जाए या जिंदगी हो जाए, हम आगे ही सोचते रहते हैं। बट देन ऐसा एक अरमान बच जाता है, बहुत शिद्दत से हम चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं पाता है, बहुत ख्वाहिश रहती है तो वो नहीं हो पाता। तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा 2323-0030 एंड 2323-4821 एंड 2970-4715।
2: Hey, very hungry. What's special today?
3: Biryani, kebabs, haleem. But wait, there's more.
2: More than food, it's the stories behind the recipes. The history of the kitchens and the flavors that shaped our city. And where do we taste all these?
3: On Jashne Hyderabad, every afternoon at 2 o'clock on FM Rainbow 101.9.
2: From Charminar's Irani Chai to the evolution of Hyderabadi Biryani, it's a feast for your ears.
4: Jashne Hyderabad, savor the city's soul.

0: वाला आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद, आपकी जमीला के साथ। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो।
1: मैडम, मैं समाचारों द्वारा फोन करने तैयार था, तो अभी तक आंसर नहीं दे, इतना स्पेशल टॉपिक देख रहा हूँ, कट कर देना वापिस आ रहा, ठीक
0: जी
1: अभी
0: जी
1: आंसर
0: बोलिए,
1: क्यों नहीं
0: आपका
1: दे।
0: नाम बोलिएगा।
1: हाँ, मेरा नाम सोनू है।
0: जी बोलिए सोनू जी। जी हाँ, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी इसलिए कॉल कट हो गया। हूँ
1: आवाज आराम से आपको सुन रहे आ रहे हैं, मेरे को आप परेशान करे, ठीक वापिस। हेलो,
0: जी जी
1: आपका
0: बोल
1: टॉपिक है ना, आपका दिल में बात है, क्या सोचना है, मोहब्बत के बारे में बोले ना। मैं भगवान को दुआ ही मांगता हूँ, परमेश्वर को और मोहम्मद से, मेरा सच्चाई मोहब्बत मेरे बेटा, मेरा परमेश्वर से मेरा सच्चाई प्रेम मिल गया। हेलो,
0: जी जी जी जी उनका उनकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही है। वो कह रहे हैं कि उन्हें हमारी आवाज़ क्लियर सुनी आ रही है। चलिए एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो।
1: हेलो,
0: जी
1: नमस्कार मैडम,
0: नमस्कार।
1: मैं के रमेश बात कर रहा हूँ मैडम,
0: जी
1: ऑनलाइन
0: जी
1: मैडम,
0: जी हाँ, ऑन एयर है आप।
1: टॉपिक क्या है मैडम?
0: जी आज का टॉपिक ये है कि अपनी ख्वाहिशें, अपने अरमान जो अभी पूरे नहीं हो पाए हैं। तो आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश है,
1: क्या मैडम, क्या बोली मैडम, ड्रीम्स
0: आपकी कोई ड्रीम या जो पूरी नहीं हो पाई है?
1: बोल रहे हैं ना, ड्रीम्स।
0: जी
1: अच्छा अच्छा
0: जी
1: ठीक है मैडम, बोलिए मैडम, ऑनलाइन मैडम,
0: जी जी
1: हम के रमेश उस्मानगंज। मेरा ड्रीम था मैडम, मेरे को नागार्जुन सागर टू और श्री शरण बोट में जाना, बल्कि बहुत ड्रीम था मैडम, मेरे को हो रहा नहीं वो होना, बल्कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। नागार्जुन सागर की श्री शरण वर्ग बोट लो बोला, चाला कोरी कौन मैडम, अभी
0: हाँ।
1: इतनी साल लड़कों ने कैंसिल है बुकिंग की,
0: अच्छा,
1: अभी
0: बहुत
1: फोन
0: सिंपल है,
1: मैंने
0: आप
1: उन्हें कर
0: कोशिश
1: लेते हैं,
0: करने
1: मूड
0: से
1: साल
0: हो
1: लड़के नहीं
0: जाएगा।
1: दी ई साल मतलब कंपल्सर बोला, ड्रीम कहा गया मैडम, मूड नाल
0: ओके
1: फैमिली दर्शी पोस्टमार्टम चूड़ा लेने घर जाने,
0: ओके, वेल थैंक यू सो मच फॉर
1: बहुत बहुत
0: कॉलिंग।
1: चाल इंडिया उन्होंने चाल बहुत चल
0: यस
1: मैडम,
0: यस यस, थैंक यू, थैंक यू
1: कैसा
0: सो मच फॉर
1: रमेश
0: कॉलिंग।
1: उस्मान गंज।
0: या थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी हाँ, ऐसी छोटी छोटी ख्वाहिशें भी रहती हैं, ख्वाहिशें अरमान रहती हैं कि हम बोट में जाए, वहाँ पे छोटी सी जगह पे रहे। हाँ, और आजकल तो वो ट्रेंड भी चल रहा है कि कार में ही सब कुछ, घर छोड़ दिया, सब कुछ घर कार पे ही रहता है उनका, खाना पीना घूमना फिरना। और बहुत सारे यंग लोग, कपल्स है या फिर यूथ कहा जाए, वो बस देश घूमने निकल गए। तो वो भी एक बहुत ही, एक ऐसा थॉट कहे या फिर एक ख्वाहिश कहे या फिर एक ड्रीम कहे, सपना कहे, ख्वाब करे, कि वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया घूमे, पूरा देश देखे।

तो बहुत सारे लोग ऐसे भी कर रहे हैं। वैसे आप बताइए कि आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश या ऐसी कोई अरमान जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई, तो मेरे साथ कॉल कीजिएगा। नंबर है 2323481 एंड 2970471। आप 2323-0030 पे भी कॉल कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद, बने रहिए, सुनते रहिए हेलो रेनबो।

0: FM Rainbow 101.9.
1: Well, आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो आपकी जमीला के साथ एनएच 141 एट स्टूडियो क्लॉक और हम बात कर रहे हैं ऐसे ख्वाहिशें ऐसे ख्वाबों की ऐसे अरमानों की जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई। कॉल करने के लिए नंबर है 0402323003023234821 and 2970471। कॉलर है उनसे बात करते हैं। हेलो
2: कुमार दे जमीला।
1: हेलो
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।
2: मैं हिंदुस्तानी दिल से हैदराबादी इकबाल कह रहा हूँ।
1: जी जी बोलिएगा। तो आप क्या कहेंगे आज के टॉपिक के बारे में?
2: निकले मेरे अरमा फिर भी बहुत निकले। अब खातिमा बिल खैर की दुआ कर रहा हूँ। यही एक किस्सा है। इंसान को चाहिए हर वक्त एक अच्छे ख्वाब देखे, अच्छे विचार देखे
1: जी।
2: और मेरा सबसे पहली एक अपने जिंदगी में मैं अच्छे लोग से मिलने का बड़ा ख्वाब रहता था मेरा।
1: अच्छा।
2: यानी कि अच्छे लोग मिले जिंदगी में, अच्छे ख्याल के लोग मिले, अच्छे विचार के लोग मिले और कोऑपरेट करने वाले, जहनी सुकून देने वाले मिले बल्कि रहता है और रहे हैं और मिले भी हैं।
1: अच्छा।
2: जिसमें से हमारे एक सुल्तान शाही अशोक अन्ना है जो मेरे को जिंदगी में काफी सपोर्ट करे, जहनी सपोर्ट करे, हर एतबार से सुकून देने वाली बात करे, हिम्मत देने वाली बात की है
1: जी।
2: तो ऐसे लोग मिलते हैं तो कारवां बहुत अच्छा गुजर जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही कहा आपने। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप कॉल करें हमें। जी हाँ, जैसे इन्होंने कहा कि लोगों का मिलना भी बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा जो लाइफ है उसका पैटर्न है बहुत इजी हो जाता है। हम कई बार बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हो जाते हैं या फिर है ना समझ में नहीं आता, कन्फ्यूजन रहता है, तो अगर एक आध दोस्त ऐसे हैं जो बिल्कुल लाइफ को एक सिंपलिटी वे में बता दे कि वो समझाए कि बात क्या है क्या नहीं है, किस तरह से हो सकता है नहीं हो सकता, तो वो जो सुलझाने का वो जो एक दो मिनट की बात होती है, लेकिन हाँ वो शख्स जो साथ में रहता है वो बहुत इजी कर देता है। जी हाँ, चलो एक और कॉलर है उनसे बात करते हैं। हेलो। उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। जी जब जिंदगी की बात करते हैं, ख्वाबों की बात करते हैं, ख्वाहिशों की बात करते हैं, तो बहुत लोगों के पास बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कितनी भी ख्वाहिशें कर लें, कितनी भी अरमान कर लें, इंसान का दिल नहीं भरता है। दिल हमेशा और वॉट नेक्स्ट में ही रहता है। लेकिन अब ऐसा सिचुएशन ऐसे बहुत लोगों में है कि भाई जो है बहुत कुछ है, बस वी आर हैप्पी और कुछ ज़्यादा की उम्मीद नहीं है, कुछ ज़्यादा ख्वाहिश नहीं है। एक और कॉलर है उनसे हम बात करते हैं। हेलो।
3: हेलो
1: जी, आपका नाम?
3: जी मेरा नाम इमरान है, मोहम्मद इमरान, मैं हैदराबाद कारवंग से बोल रहा
1: हूँ। जी बोलिए
3: इमरान जी। इमरान जी
1: हेलो। हाँ जी बोलिए इमरान जी।
3: मैं नाबीना हूँ, दिखता नहीं मेरे को, आप लोग मेरे से बात नहीं करते, सबसे बात करते, आप लोगों की वजह क्या है?
1: जी आपका अभी कॉल कनेक्ट हुआ है ना?
3: हाँ हुआ है, अभी आप लोग उठाए कॉल। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज क्या रखे हैं सर टॉपिक?
1: जी आज का टॉपिक ये है कि आपकी ख्वाहिशें, आपके अरमान जो पूरे नहीं हो पाए हैं, आप हमारे साथ शेयर कीजिए।
3: हमारे तो अरमान, हमारे तो ख्वाहिशें, सब कुछ है।
1: अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है
3: जी। अच्छा
1: जी, तो चलिए बहुत अच्छा लगा जी।
3: गाना लगाइए ना हमारी पसंद का।
1: जी हम अभी तो ऑलरेडी गाने क्यूड अप हो चुके हैं, आप बताइएगा कि नेक्स्ट आरजे आके लगा देंगे। कौन से गाने की ख्वाहिश आपकी?
3: नहीं, सुनना चाह रहे थे हम अभी।
1: जी कौन सा गाना?
3: वही गाना देखो, पल दो पलटा ये सफर, पल दो पलटा स्वास।
1: जी जी जी मैं कोशिश करूंगी।

0: दी आपने फिल्म का नाम।
1: जी, मैं कोशिश करूंगी आपका ये गाना प्ले करने के लिए। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें कॉल करें।
0: मैं हैदराबाद से नाम लेके ले जाइए, मैं सुन रहा हूँ अभी,
1: जी
0: मैं अभी आपका चैनल सुन रहा हूँ, आप
1: जी
0: ले जाइए प्लीज।
1: मैं कोशिश करूंगी, मैं आपसे वादा नहीं कर रही हूँ, मैं कोशिश करूंगी आपका गाना हम
0: नहीं
1: प्ले
0: नहीं
1: कर पाए।
0: कोशिश करिए,
1: जी
0: कोशिश करिए
1: चलिए,
0: मैम, प्लीज
1: बहुत
0: आप।
1: बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी हाँ, एक बात तो ये है कि हर कॉलर, हम ऐसा नहीं कहते कि हर कॉल अटेंड हो जाए, जो कॉल आता है हम उसे उठा देते हैं। तो ये नहीं कि उनका नहीं सुनेंगे, इनकी बात सुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, हमें जो कॉल आता है हम सीधा उठा लेते हैं। तो ये ऐसी वही लिसनर्स की करेंगे, यही लिसनर्स की ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है। एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो
0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ नमस्ते मैडम,
1: नमस्ते।
0: मैं सिकंदराबाद डीवी कॉलोनी से बोल रहा हूँ।
1: जी, बोलिए सर।
0: 1966 का गाना होना।
1: जी, मैं अभी गाने की फरमाइश तो नहीं हो पाएगी आपकी, आप टॉपिक के बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
0: ओके, तो क्यों, ट्रैफिक तो है हैदराबाद में बहुत है।
1: नहीं, टॉपिक टॉपिक आज का टॉपिक ये है कि आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश या आपका ऐसा कोई ड्रीम जो इनकम्प्लीट है, हो नहीं पाया है, यू कुडंट फुलफिल दैट विश, ऐसा कुछ है?
0: नहीं मैडम, नहीं कुछ भी नहीं।
1: ओके, वेल थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू। तो चलिए नेक्स्ट, हम एक गाना सुनते हैं, गाने के बाद हम बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। इट्स 1:45 एट स्टूडियो क्लॉक और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद।

0: ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर। उर्दू प्रोग्राम नैरंग की बज़ में सामाइन का दिली खैर मकदम है और हमारा पुरखलोस आदाब। सामाइन, आज की इस बज़म को हमने सजाया है हरफ ताबिंदा से। तहरीर व पेशकश होगी मोहम्मद नूरुद्दीन की। बिसात गज़ल के तहत आप समाअत करेंगे शायर नजम फारूकी की गजलियात। गीत सुरीले गाते जा, इसके तहत आप सुनेंगे फिल्मी नगमे। उन्वान होगा फिल्मी नगमों का खुशी या खुशियां। और बज़्म के आखिर में आप समाअत करेंगे पयाम शब, पेशकश होगी नदीम अख्तर जैदी की। तो सामाइन, आज की इस बज़्म में पेश किए जाने वाले प्रोग्राम की ये तफसीलात थीं। अब बज़्म का हम आगाज़ करते हैं हरफ ताबिंदा से। तहरीर व पेशकश है मोहम्मद नूरुद्दीन की, आइए सुने।
1: हमारी जिंदगियों में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है हौसला। हौसला क्या है? क्या यह सिर्फ बहादुरी का नाम है? नहीं, हौसला सिर्फ बहादुरी नहीं, बल्कि यह एक अंदरूनी क़ुव्वत है, एक ऐसी आग है जो हमें नामुमकिन को मुमकिन बनाने की तरगीब देती है। यह वो जज्बा है जो हमें नाकामी के बाद दोबारा उठने, ठोकर खाकर संभलने और मुश्किल हालात में साबित कदम रहने की हिम्मत देता है। हम सबकी जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जब हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, जब मायूसी के बादल हमें घेर लेते हैं, लेकिन यही वो वक्त होता है जब हमें अपने अंदर के हौसले को जगाना होता है। तारीख गवाह है कि दुनिया के बड़े बड़े रहनुमाओं, साइंसदानों और कामयाब लोगों ने अपनी जिंदगी में बेशुमार चैलेंजेस का सामना किया। उन्हें बार बार नाकामी का मुंह देखना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए हजारों बार कोशिश की, लेकिन वो हर नाकामी को एक नया सबक समझते रहे। उनका मशहूर कौल है कि मैं नाकाम नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 ऐसे तरीके दरियाफ्त किए जो काम नहीं करते। ये हौसले की ही आला मिसाल है, हौसला और मकसद का तायुन। हौसला हमें खतरात मोल लेने की तरगीब देता है। जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो हमें हौसले की ज़रूरत होती है। नई महारतें सीखना, नए ख्यालात पेश करना या किसी भी मुश्किल काम में पहल करना, ये सब हौसले के बगैर मुमकिन नहीं। याद रखें, हर बड़ा ख्वाब हौसले की पहली सीढ़ी चढ़ने से ही पूरा होता है, चाहे वो किसी नए कारोबार का आगाज हो, कोई मुश्किल इम्तिहान पास करना हो या अपने माशरे में कोई मुस्बित तब्दीली लाना हो। ये सब हौसले की ही बुनियाद पर खड़े हैं। साबित कदमी और खुद एतमादी। हौसला हमें साबित कदमी सिखाता है। जब हम किसी मकसद के हुसूल के लिए निकलते हैं तो रास्ते में कई रुकावटें आती हैं। कभी लोग हमारी हौसला शिकनी करते हैं, कभी हालात साजगार नहीं होते और कभी खुद हमें अपने इरादों पर शक होने लगता है। ऐसे में हौसला ही हमें अपने मकसद से भटकने नहीं देता और हमें मुस्तकिल मिजाजी से कोशिश करते रहने पर आमदा करता है। ये हमें खुद एतमादी देता है कि हम उन चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं और इन पर काबू पा सकते हैं। मिसाल के तौर पर, वो खिलाड़ी जो मैच के आखिरी लम्हात तक अपना हौसला नहीं हारते और जीत के लिए आखिरी दम तक कोशिश करते हैं, वो फतेहयाब होते हैं। हौसला और मुस्बित सोच। हौसला हमारी शख्सियत को निखारता है। एक हौसला मंद शख्स न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बनता है। उसकी मुस्बित सोच और उसकी अज़्म की पुख्तगी

दूसरों को भी आगे बढ़ने की तरगीब देती है। जब आपके अंदर हौसला होता है तो आप मुश्किलात को मसाइल नहीं बल्कि मौके समझते हैं, जब आपको मजीद मजबूत बनाते हैं। ये एक वायरल असर की तरह है, जब एक शख्स हौसला दिखाता है तो उसके आसपास के लोग भी मुतासर होते हैं और अपने अंदर की सलाहियतों को पहचानते हैं। हौसले की परवरिश कैसे की जाती है? सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने अंदर इस हौसले की शमा को कैसे रोशन रखें और इसे कैसे परवान चढ़ाएं। अपने छोटे छोटे मकासद तय करें। जब आप छोटे अहदाफ हासिल करते हैं तो आपका हौसला बढ़ता है और आप बड़े चैलेंजेस के लिए तैयार होते हैं। नाकामियों से सीखें। हर नाकामी को एक सीखने का मौका समझें, ना कि मायूसी का सबब। अपनी गलतियों से सबक हासिल करें और आगे बढ़ें। मुस्बित लोगों से ताल्लुक रखें, ऐसे अफराद के साथ वक्त गुजारें जो आपको तरगीब दें और आपके हौसले को बुलंद करें। अपनी सलाहियतों पर यकीन रखें, अपनी ताकतों को पहचानें और उन पर

0: था जो घर घर जाकर, रोशनी बांटता फिरता था जो घर घर जाकर, हाय वो शख्स भी मोहताज जिया है यारो, हाय वो शख्स भी मोहताज जिया है यारो। और गजल के आखिरी दो शेर हैं कि हादसे आके मेरी राह में टल जाते हैं, हादसे आके मेरी राह में टल जाते हैं, रात दिन माँ मेरी मसरूफ़ दुआ है यारो। हादसे आके मेरी राह में टल जाते हैं, रात दिन माँ मेरी मसरूफ़ दुआ है यारो। और गजल का आखिरी शेर है कि ऐश व इशरत ने मुझे छोड़ दिया है जब से, ऐश व इशरत ने मुझे छोड़ दिया है जब से, रंज कुल्फत ने मुझे थाम लिया है यारो, रंज कुल्फत ने मुझे थाम लिया है यारो। मख्ता समाज फरमाए, वो जो बारूद के हथियार का ताजिर था जफर, वो जो बारूद के हथियार का ताजिर था जफर, अमन के नाम पे मजमून लिखा है यारो, अमन के नाम पे मजमून लिखा है यारो, जब से अखबार में मजमून छपा है यारो, शहर में वो मेरी पहचान बना है यारो, शहर में वो मेरी पहचान बना है यारो। आइए एक गजल और सुनते हैं। अर्ज किया है कि तुम्हारा तस्करा हमने जो सुबह शाम किया, तुम्हारा तस्करा हमने जो सुबह शाम किया, तो घर में आके उजालों ने फिर खयाम किया, तो घर में आके उजालों ने फिर खयाम किया, तुम्हारा तस्करा हमने जो सुबह शाम किया, तो घर में आके उजालों ने फिर खयाम किया। गजल का हुस्न मतलब है कि वो जिसको सर पे बिठाने का एहतमाम किया, वो जिसको सर पे बिठाने का एहतमाम किया, नजर से मुझको गिराने का उसने काम किया, नजर से मुझको गिराने का उसने काम किया। और शेर है, अना परस्तों से हमने रखा नहीं मतलब, अना परस्तों से हमने नहीं रखा मतलब, जो उड़ रहे थे उन्हें हमने जेरे दाम किया, जो उड़ रहे थे उन्हें हमने जेरे दाम किया। और गजल का आखिरी शेर है कि खुदा का खौफ हमेशा रहा है पेश नजर, खुदा का खौफ हमेशा रहा है पेश नजर, कभी ना भूले से हमने हराम काम किया, खुदा का खौफ हमेशा रहा है पेश नजर, कभी ना भूले से हमने हराम काम किया। और गजल का मख्ता और हालात हाजरा की तर्जुमान है यह गजल, मुनाफिकीन थे जितने वो कट गए हमसे, मुनाफिकीन थे जितने वो कट गए हमसे, जफर जो हमने जरा बेरुखी को आम किया, जफर जो हमने जरा बेरुखी को आम किया, मुनाफिकीन थे जितने वो कट गए हमसे, जफर जो हमने जरा बेरुखी को आम किया, तुम्हारा तस्करा हमने जो सुबह शाम किया, तो घर में आके उजालों ने फिर खयाम किया। एक और गजल समाज फरमाए, तवज्जो चाहूंगा कि कुफर को होना था रुसवा, कुफर रुसवा हो गया, कुफर को होना था रुसवा, कुफर रुसवा हो गया, आग गुलशन बन गई दरिया में रास्ता हो गया, आग गुलशन बन गई दरिया में रास्ता हो गया। एक और मतलब समाज फरमाए कि सहते सहते चोट उसकी सख्त ऐसा हो गया, सहते सहते चोट उसकी सख्त ऐसा हो गया, आई ना था दिल हमारा संग जैसा हो गया, सहते सहते चोट उसकी सख्त ऐसा हो गया, आई ना था दिल हमारा संग जैसा हो गया। शेर की आंख है, अर्ज किया है कि सबको अपना मानने की भूल मुझसे हो गई, सबको अपना मानने की भूल मुझसे हो गई, मुख्तसर सी बात यह है मुझसे धोखा हो गया, मुख्तसर सी बात यह है मुझसे धोखा हो गया, सबको अपना मानने की भूल मुझसे हो गई, मुख्तसर सी बात यह है मुझसे धोखा हो गया। शेर है कि मसलहत की जद में देखो लोग कितने आ गए, मसलहत की जद में देखो लोग कितने आ गए, बोलने वाला भी मेरे हक में गूंगा हो गया, बोलने वाला भी मेरे हक में गूंगा हो गया। शेर देखिए कि जर्फ ने आंसू बहाने से मुझे रोके रखा, जर्फ ने आंसू बहाने से मुझे रोके रखा, जब्त मैं करता रहा तो गम भी हल्का हो गया, जब्त मैं करता रहा तो गम भी हल्का हो गया। गजल का मकता देखिए कि एक भारी बोझ था इसिया का मुझ पर ऐ जफर, एक भारी बोझ था इसिया का मुझ पर ऐ जफर, रात भर रोता रहा तो बोझ हल्का हो गया, रात भर रोता रहा तो बोझ हल्का हो गया, एक भारी बोझ था इसिया का मुझ पर ऐ जफर, रात भर रोता रहा तो बोझ हल्का हो गया, कुफर को होना था रुसवा, कुफर रुसवा हो गया, आग गुलशन बन गई दरिया में रास्ता हो गया। बेहद शुक्रिया।
1: रात भर रोता रहा तो गम दूर हो गया। बिसात गज़ल के तहत सामईन अभी आप समात कर रहे थे गज़लियात जनाब नज़्म फ़ारूक़ी से। ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 FM MHz पर। आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग, और इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है रात के 9:50 और 52 सेकेंड्स। और अब वक्त है सामने ग्राम

गीत सुरीले गाती जा। इसके तहत फिल्मी नगमे हम सुनेंगे। उन्वान मैंने आज का लिया है खुशियाँ खुशी। खुशी वाहिद लफ्ज़ है और उसकी जमा खुशियाँ हैं। इंसान की ज़िंदगी से जुड़ी हुई ये बहुत ही अहम कड़ी है ज़िंदगी की। ये वैसे खुशी का साथी गम है और कोई भी नहीं चाहेगा कि गम उठाएं, गम सहें और गम अपने घर लाएं। हर कोई यही चाहेगा कि वो खुश खुर्रम ज़िंदगी बसर करे, खुशियाँ ही खुशियाँ उसकी ज़िंदगी में हों और बहुत ही लुत्फ़ और बड़े ही आराम और सुकून से खुशियों के साथ ज़िंदगी बसर करें।

बिल्कुल सामाइन, खुशियों के कई रंग होते हैं, कई कई रंग, अनेक, जितनी शायद एक इंसान की उम्र होती है उससे कहीं ज़्यादा खुशियों के रंग होते हैं। और एक खुशी का रंग ऐसा भी है जिसमें हम दुआ देते हैं उसे सदा खुश रहने की, और मांगते हैं कि हमेशा तुम्हारा दामन खुशियों से भरा रहे।

0: सामिन, हम सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नायरंग और बज़्म सजी है गीत सुरीले का तेजा, और हम सुन रहे हैं खुशियाँ या खुशी उन्वान पर फिल्मी नगमे। अब बात करते हैं, यकीनन खुशी, हर कोई खुश रहना चाहता है और बड़ी ही खुशी और मसरत के साथ ज़िंदगी बसर करना चाहता है, तो फिर ये कहना शायद लाजमी हो जाएगा कि खुशी अच्छी है।
1: अच्छा।

वो तो जग रही, राजा वो तो जग रही, भवज कुटिया में वो तो जग रही, राजा जग रही रे वो तो जग रही।

सामान्य जिंदगी में सिर्फ खुशियाँ होना ही ज़रूरी नहीं, बल्कि देखा जाए तो हकीकतन फ़र्द की ज़िंदगी में खुशियों से ज़्यादा दुख का साथ होता है। और अगर फ़लसफ़ा बांधा जाए, ज़िंदगी एक ऐसी है जिसमें खुशियों के साथ गम का ज़्यादा साथ होता है, और ज़िंदगी वो है जो दुख भी और गम भी बड़े आसानी के साथ सहती चली जाती है, और न गिला न शिकवा, क्योंकि ज़िंदगी में खुशियाँ और गम आते ही रहते हैं, और शायद ज़िंदगी का नाम खुशियाँ और गम ही है, और ज़िंदगी को ये चीज़ें सहना ज़रूरी है।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 FM मेगाहर्ट्ज पर सामाईन आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नायरंग और बज़्म सजी है, गीत सुरीले गाते जा और हम फिल्मी नगमे सुन रहे हैं खुशी उनवान पर। बात करते हैं, अब जैसे कि बात हो ही रही है कि ज़िंदगी का अहम जुज़ माना जाता है खुशी, लेकिन जहां हम देखते हैं खुशी के साथ गम का ज़्यादा मिलन होता है, तो ज़िंदगी वही बेहतर समझी जाती है जिसमें खुशियाँ हों और खुशियों के साथ गम हो। यानी अगर देखा जाए तो गम, यानी गम अगर ज़िंदगी में होंगे तो ही जब हमको खुशी की अहमियत का एहसास होगा। इसीलिए ज़िंदगी में अगर कभी खुशी कभी गम हो तो फिर बड़ा आसानी से ज़िंदगी गुजर जाएगी और अहमियत पता चलेगी कि खुशी की ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा अहमियत है, और ये बताता है गम।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 FM मेगाहर्ट्ज पर। सामाईन आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग और बजन सजी हैं गीत सुरीले गाते जा और हम सुन रहे हैं हिंदी फिल्मी नगमे खुशी उन्वान पर। जिंदगी में खुशी और गम का होना ज़रूरी है और कहीं ऐसा भी है जहां बस तड़प है, धुन है, मजबूरी है, बेबसी है, बेकसी है, एक अजीब सा माहौल छाया हुआ है और निगाहें तलाश कर रही हैं खुशियों को कि इस दुख भरी ज़िंदगी में अगर खुशी आ जाए तो क्या ही बेहतर है।

सच समाइन, खुशी की तलाश में जब फर्द दुआएं करता है गिड़गिड़ा कर, तो किसी के साथ ये भी होता है कि जाती हैं दुआएं ऊपर, लेकिन खुशियों के बजाय फिर गम साथ ले आती हैं। खैर, ये तो अपने अपने नसीब है और वक्त है, हालात है, कब क्या हो जाए किसे पता। समाइन, आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग और बज़्म सजी है गीत सुरीले का तेजा। और इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है रात के 10:22 और 78 सेकेंड्स, और 58 सेकेंड्स हो रहे हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में। तो अभी हमारे पास वक्त बाकी है, 35 मिनट का वक्त है हमारे पास, और भी तो और भी हम फिल्मी नगमे सुनेंगे। बस खुशियों की बात हो रही है, खुशियाँ ये भी होती हैं कि आप तकलीफ़ उठाएं और किसी को खुशियाँ दें, उनके खुशियों में मगन हो जाएं, ये भी तो जिंदगी है, जिंदगी का एक हिस्सा ये भी है। बस ऐसे भी होते हैं दूसरों को खुश देखकर खुद खुश होते हैं और दूसरों की मदद करते हैं ताकि उन्हें खुशियाँ मैसर हों। और माना भी ये भी जाता है कि ऐसा भी क्या जीना जो आप अपनी ही खुशियों में मगन हैं, ऐसा जीना बेकार है, और वही जीना बेहतर है, मुनासिब है, अच्छा है जो दूसरों को खुशियाँ देकर जिया जाए।

सामिन, खुशी ऐसी भी होती है जहाँ रंग जमा हो खुशियों का, और वो जो खुशी का इजहार होता है दबे दबे अल्फाज में, वो दर्द, वो सिसक, वो दुख जो इस तरह भी बयां होता है।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर सामाइन आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग, और बज़्म सजी है गीत सुरीले गाते जा। सामाइन, खुशी बाग़ो चमन से भी हासिल होती है, खुशी औलाद से भी हासिल होती है, खुशी वो जो मंजिल मकसूद होती है हमारी उसको पाने के बाद भी खुशी हासिल होती है, और वो जो हमारा मकसद होता है, एम होता है, हम कुछ सोच कर रखे होते हैं और वो सोच, वो फिक्र, वो जो चीज़ होती है हमें हासिल हो जाती है, मिल जाती है, हम पा लेते हैं, तभी भी खुशी हासिल होती है। और खुशियों का तो क्या कहना, अगर मानो तो हर छोटी छोटी चीज़ों में भी हमें खुशियाँ मैसर होती हैं और हम खुश हो जाते हैं।

सामिन, खुशियाँ अगर ज़िंदगी में ना हों तो खुशियों को पाने की, खुशियों को हासिल करने की भी कोशिश की जाती हैं और अपनों को खुश रखने की भी कोशिश की जाती है।

समय इसी गीत पर, गीत सुरीले गाते जाओ यहीं पर ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 FM MHz पर। अब स्टूडियो घड़ी में रात के 10:57 और 11 सेकेंड्स हो रहे हैं। अब उर्दू प्रोग्राम नैरंग की बज़्म के आखिर में समाप्त करते हैं पयाम-ए-शब, जिसे पेश कर रहे हैं नदीम अख्तर ज़ैदी। आइए सुनें।

सिर्फ हाथों को न देखो, कभी आंखें भी पढ़ो। कुछ सवाली बड़े खुद्दार हुआ करते हैं। ये शेर हमें इंसानियत, हसासियत और दूसरों के एहसासात को समझने का दर्स देता है। हर जरूरतमंद अपनी मजबूरी जबान से बयान नहीं कर पाता। बहुत से लोग अपनी इज्जत नफ्स की वजह से हाथ नहीं फैलाते, मगर उनकी आंखें उनके हालात की कहानी सुना रही होती हैं। इसीलिए सिर्फ जाहिरी चीजों पर ना जाएं, बल्कि लोगों के चेहरों, रवैयों और खामोशियों को भी समझने की कोशिश करें। जो शख्स दूसरों की गैर कही जरूरत को पहचान लेता है, वही हकीकी मानों में इंसानियत का हक अदा करता है।

पाया मैं शब के साथ ही सामने इकराम हमारी ये आज के उर्दू प्रोग्राम नैरंग की बस्म अब अपने इख्तिताम पर पहुंचती है, इस वादे के साथ कि कल ठीक 9:30 बजे उर्दू प्रोग्राम नैरंग की बज़म सजाए हम हाजिर हो जाएंगी। उस वक्त के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शबा खैर।

0: ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 FM MHz पर। सामिन, रात के 11 बजने ही वाले हैं। चंद्र लम्हों में आप दिल्ली केंद्र से हिंदी व अंग्रेजी में बारी बारी समाचार रिले किए जाएंगे और समाचार के बाद यानी 11:10 से आप सुनेंगे दिल्ली FM गोल्ड दिल्ली के प्रोग्राम्स। तो सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में
2: संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
3: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर

0: भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other union ministers and senior officials of armed forces, were also present on the occasion. A report.
2: The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. Some recipients of the Ati Vishisht Seva Medal included Air Marshal Tarun Chaudhary, Lieutenant General Neeraj Varshne and Vice Admiral Anand Vai Sardesai. Recipients of the Sarvottam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Pratik Sharma, Air Marshal Nagesh Kapoor and Lieutenant General Rajiv Ghai. Among those honored with the Param Vishisht Seva Medal were Vice Admiral Sanjay Vatsayan, Lieutenant General Manjinder Singh and Air Marshal Ashutosh Dixit. Recipients of the Uttam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Dhiraj Seth, Air Marshal Manish Khanna and Vice Admiral Tarun Sopti. The medals were awarded to personnel for distinguished service of an exceptional order with Soumya Sharan, Aman Yadav, Akashwani News, Delhi.
1: Prime Minister Narendra Modi has said that his visit to Seychelles has yielded significant results that will enhance the friendship between both nations. The Prime Minister returned home after concluding his 3-day successful visit to the

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना

निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मूज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का पारगमन फिर शुरू करने पर सहमत हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री कासिम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में टेक्सास में ब्राजील और जापान के बीच कांटे का मुकाबला जारी है। मैच में जापान ने 1 गोल की शुरुआती बढ़त ले ली, लेकिन हाफ टाइम के बाद ब्राजील ने बराबरी का गोल दागकर मैच में अभी 1-1 गोल की बराबरी कर ली है। इस नॉकआउट मुकाबले में पराजित होने वाली टीम विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप से बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सच कहूँ तो इतना सफर करते हुए थकने के बाद यदि फिर भी अंत में मुझे कहीं पहुँचना है तो केवल तुम तक।

मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:12 और 22 सेकेंड। निशिगंधा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आशा जी की आवाज़ के साथ।

इस गाने की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पैर खुद ब खुद थिरकने लगते हैं, और वैसे भी दिल अगर किसी के प्यार में धड़क रहा हो तो पैरों में घुंघरू

खुद ब खुद बन जाते हैं। क्या कहते हैं आप, मुझे मालूम है आप मेरे साथ हैं। प्रोग्राम के साथ साथ मौसम भी खुशनुमा है और ऐसे में फिर से एक और मीठा गीत सुन लिया जाए। अगला गीत आशा जी की आवाज़ में।

कुछ गानों की उम्र कभी खत्म नहीं होती है ना, जब भी वो सुनाई देते हैं दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। आशा जी ने इस गाने को जिस सादगी से और खूबसूरती के साथ गाया है वो सीधे दिल में जगह बनाता है।

वैसे एक बात तो सच है, मोहब्बत में एक दौर ऐसा भी आता है जब आपके लिए दुनिया के सारे नज़ारे, सारी बहारें, सारी खुशियाँ बस एक ही इंसान बन जाता है। फिर हम जहाँ भी देखें, जो भी सोचें, हर तरफ बस वही एक शख्स नज़र आता है। आपको पता है, प्यार की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि ये हमें किसी एक इंसान का बना देता है। अगला गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में अभी के लिए।

जो तुम्हारे लिए नहीं लिखा गया उसमें भी मौजूद हो तुम, जो तुम्हारे लिए नहीं लिखा गया उसमें भी मौजूद हो तुम, और अदृश्य की तरह मौजूद हो तुम हर तरफ, जैसे दूरी में बहुत दूर, जैसे जिंदगी में ना की बिंदी, इश्क का आधा क्षण और इंतजार में आखी मात्रा की तरह। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:40 और 2 सेकेंड। गीतों की महफिल, बातों की महफिल, यानी आपकी अपनी महफिल निशिगंधा सुन रहे हैं आप, और अगला गीत रफी साहब की आवाज़ में।

जब तारीफ इतनी खूबसूरत और जादुई हो तो सुनने वाले का दिल ना खिले, ऐसा कैसे हो सकता है। जब दिल खिल चुका है तो फिर उसे महकना भी चाहिए। अगला गीत लता जी की आवाज़ में।

कितनी अजीब बात है ना, खुशबू को तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे देखा नहीं जा सकता। लेकिन जब कोई कहता है कि हमने देखी है नाखों की महकती खुशबू, तो समझ आता है कि इश्क पर एक नया रंग उतर आया है और ज़रूरत है उस रंग को महसूस करने की, समझने की और शायद अपनी ज़िंदगी में उतारने की भी।

निशिगंधा में आज के लिए बस इतना ही। 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 1:10 पर। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे, विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल विधानसभा में घोषणा की कि 2 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस

विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। श्री अधिकारी ने बताया कि यह समिति शादी, तलाक और गोद लेने जैसे कुल 9 विषयों पर अध्ययन कर 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि श्री अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि अनुसूचित जनजाति, कुर्मी और प्राचीन मूल समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से 2 दिन पूर्वोत्तर का दौरा करेंगे। श्री चौहान असम के गुवाहाटी में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में असम और आसपास के इलाकों में बाढ़ से फसलों और गांवों में हुए नुकसान की समीक्षा करेंगे। इसके बाद श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मूज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। फीफा विश्व कप में ब्राजील राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में ब्राजील ने जापान को 1 के मुकाबले 2 गोल से हरा दिया। राउंड ऑफ 32 के एक अन्य मैच में अमेरिका के बोस्टन स्टेडियम में जर्मनी का सामना पैराग्वे से होगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच देर रात 2 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 8 सेकंड। गीत सुहाने प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। गीत सुहाने यानी कि एक ऐसा दौर जो इतिहास और स्मृतियों से हमें आवाज़ देता है, हमें पुकारता है। तो चलिए फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ के साथ।

अभी आप सुन रहे थे साल 1962 की सुपरहिट फिल्म असली नकली का ये सदाबहार गीत, और आवाज़ थी लता मंगेशकर की, संगीत था शंकर जयकिशन का, और इस गीत के बोल लिखे थे यानी गीतकार थे शैलेंद्र साहब। इस फिल्म के निर्देशक थे ऋषिकेश मुखर्जी, और ऋषिकेश मुखर्जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो आम इंसानों की ज़िंदगी पर फिल्में बनाते थे, लेकिन असली नकली की कहानी बाकी सभी फिल्मों से जो उन्होंने निर्देशित की थी उससे थोड़ी अलग और दिलचस्प थी। और अब हम सुनवाते हैं अगला गीत फिर से लता जी की आवाज़ में।

पारसमणि से सुना आपने ये गीत लता जी की आवाज में। गीतकार थे असद भोपाली और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ये फिल्म 1963 में रिलीज हुई थी और ये एक संगीतमय फिल्म थी। इस फिल्म का निर्देशन किया था बाबू भाई मिस्त्री ने। बाबू भाई मिस्त्री वही जिनके बारे में कहा जाता है, जिन्हें सिनेमाई प्रभावों का जनक भी कहा जाता है। ये फिल्म आर्थिक रूप से सफल रही। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और इस फिल्म का संगीत काफ़ी सराहा गया। फिल्म को तमिल में मायामणि शीर्षक से 1964 में रिलीज किया गया। और अब अगला गीत लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में, फिल्म उजाला से।

साल 1959 की फिल्म उजाला का ये सदाबहार गीत सुन रहे थे आप, मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीतकार थे शंकर जयकिशन, और ये गाना आज भी उतना ही फ्रेश लगता है जितना अपने दौर में रहा था। इस गीत को पिक्चराइज किया गया था शब्बी कपूर और माला सिन्हा पर। और अब अगला गीत रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:47 और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने, यानी एक ऐसा दौर जो इतिहास और स्मृतियों से हमें आवाज़ देता है अपने संगीत के लिए, अपने गीतों के लिए। तो चलिए फिर सुनते हैं अगला गीत जगजीत कौर की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे साल 1964 में आई फिल्म शगुन से ये गीत जगजीत कौर की आवाज़ में। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आर्थिक रूप से बहुत सफल फिल्म नहीं रही, लेकिन इसके गानों को दर्शकों द्वारा खासा सराहा गया। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी वहीदा रहमान, निवेदिता और कमलजीत साहब ने। इस फिल्म का संगीत तैयार किया था खयाम साहब ने और गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी ने। अगला गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में, फिल्म मदर इंडिया से।

गीत सुहाने प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही। 2 बजे होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 2:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्य के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान कानून के पालन के लिए राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि 2 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बिल का मसौदा पेश किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। श्री अधिकारी ने कहा कि ये समिति 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर राज्य सरकार संहिता तैयार करेगी। हालांकि श्री अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि अनुसूचित जनजाति, कुर्मी और प्राचीन मूल समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि कानून का शासन ना तो कोई कल्याणकारी योजना है और ना ही कोई आर्थिक नीति है, बल्कि ये सत्ता के इस्तेमाल को अनुशासित करता है ताकि कोई भी व्यक्ति मनमानी करने वाली सरकार का शिकार ना बने। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस सम्मेलन में अपने मुख्य संबोधन में ये बात कही। मुंबई सीमा शुल्क अधिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अबू धाबी से आए 25 साल के एक यात्री को 2,38,00,000 रुपए मूल्य के लगभग 7 किलो गांजे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले आरोपी मोइन खान को एयर खुफिया इकाई ने खास जानकारी के आधार पर पकड़ा। नशीली दवा और मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत

और इस तरह हर बार प्रेम करते वक्त कुछ ना कुछ छूटता रहा और इस तरह हर बार प्रेम करते वक्त कुछ ना कुछ छूटता रहा और हर बार उसके दूर चले जाने पर लगता रहा, जितना भी प्रेम किया कम ही तो किया, जिसे भी दिया प्रेम कम ही तो दिया। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12 और 5 सेकंड। शुरू हो चुका है प्रोग्राम रात सुरमई। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रात सुरमई यानी एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम रात के सुरों को, रात के जज्बात को, रात के एहसास को अपने गीतों से, अपनी बातों से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ के साथ।

वाकई कुछ नजरें सिर्फ देखती नहीं हैं बल्कि दिल पर ठहर जाती हैं, दिल पर अपनी जगह बना लेती हैं। इस गीत में मोहब्बत का वो एहसास शामिल था जहां किसी की मौजूदगी ही दुनिया की सबसे बड़ी पनाह लगने लगती है। अगला गीत किशोर कुमार और लता जी की आवाज में गाता।

बातों की खूबसूरत सफर के साथ साथ गीतों का खूबसूरत सफर चालू है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है ना? जब साथ कोई अपना होता है तो रास्ते लंबे नहीं लगते, बल्कि इस रास्ते ही मज़ेदार होते हैं। मंजिल उतनी मायने नहीं रखती, क्योंकि जब साथ कोई अपना होता है तो हर मोड़ एक धुन बन जाता है। अगला गीत आप ही के लिए।

कभी कभी ऐसा होता है ना, मेरे साथ बहुत होता है कि दिल की बातें आंखों से कही जाएं तो कुछ और बात होती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर भाषा कह लीजिए, शब्द कह लीजिए, ठहर जाते हैं, वहीं पर निगाहों का निशाना बहुत दूर तक जाता है। क्या कहते हैं आप, मुझे मालूम है आप मेरे साथ हैं। अगला गीत आशा जी की आवाज़ में, आप ही के लिए।

कुछ कहानियां अधूरी रह गईं, कुछ को छोड़ दिया गया अधूरा जानबूझकर, कुछ कहानियां अधूरी रह गईं, कुछ को छोड़ दिया गया अधूरा जानबूझकर। दोनों ही भटकती रहती हैं, अधूरा सा खालीपन, खाली सा अधूरापन लेकर एक अंत की खोज में। और इस भटकाव में एक रोज मिल जाती हैं दो अधूरी कहानियां और बनती हैं एक और अधूरी कहानी।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 2:40 और 29 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई। रात के सुरों को, रात के दर्द को अपनी कुछ बातों और गीतों से समझने की कोशिश, और इसी कड़ी में सुनते हैं हम अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

ख्वाब के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो सिर्फ नींद में आते हैं, नींद में आते हैं, लेकिन कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जो नींद खुलने के बाद भी आंखों में ठहर जाते हैं। शायद इसलिए रातें सिर्फ सोने के लिए नहीं होती, बल्कि कभी कभी वो दिल की सबसे खूबसूरत मुलाकातों की गवाह भी बन जाती है। और जब रात इतनी हसीन हो तो गीतों का सिलसिला, बातों का सिलसिला थमे कैसे। आइए इसी खुशनुमा एहसास के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अगला गीत।

0: मोहब्बत में धीरे धीरे बोलने की बात इसलिए कही जाती है क्योंकि मोहब्बत को कभी भी ऊंची आवाज की जरूरत नहीं पड़ती। दिल की बातें हमेशा धीरे धीरे ही कही जाती हैं ताकि दुनिया नहीं सिर्फ वही शख्स उन बातों को सुन पाए जिसके लिए वो बात कही गई है। अगला गीत किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है

से इजहार किया जाए, उनका ध्यान रखा जाए और अपने व्यवहार से उस प्यार को साबित भी किया जाए। रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में यानी 3 बजे आप सुनेंगे समाचार। 3:10 पर हमरा ही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी अर्चना सचदेवा। मुझे यानी अपनी रात की हम सफर मंजू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि 2 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बिल का मसौदा पेश किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। श्री अधिकारी ने कहा कि ये समिति 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि श्री अधिकारी ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित जनजाति, कुर्मी और प्राचीन मूल समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम के केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से 2 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर रहेंगे। श्री चौहान असम के गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में असम और आसपास के इलाकों में बाढ़ से फसलों और गांवों में हुए नुकसान की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। मुंबई सीमा शुल्क अधिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अबुधाबी से आए 25 साल के एक यात्री को 2,38,00,000 रुपए मूल्य के लगभग 7 किलो गांजे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले आरोपी मोइन खान को एयर खुफिया इकाई ने खास जानकारी के आधार पर पकड़ा। नशीली दवा और मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता

रात के 3:11 और 13 सेकंड हुए हैं। हमराही कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, खामोशियां बहुत कुछ कह जाती हैं, मगर जब लफ्जों को संगीत का साथ मिल जाए तो वो सीधे रूह में उतर जाते हैं। मोहब्बत का दौर चाहे कोई भी हो, लेकिन जो बात 60 और 70 के दशक के गानों में थी, वो बात ही कुछ अलग थी। उस समय इजहारे मोहब्बत में आंखों से सवाल होते थे और धड़कनों से जवाब मिलते थे।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म आप आए बहार आई से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, मोहब्बत में जब महबूब थोड़ा दूर दूर रहता है तो दिल की बेताबी और बढ़ जाती है। फिर दिल खुलकर तो नहीं कहता, लेकिन आंखों ही आंखों में एक प्यारी सी शिकायत करता है कि देखिए हुजूर, मुझसे रह के दूर दूर।

ये प्यार से। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म तू नहीं और सही से ये गीत आपने अभी सुना। दोस्तों, जब दिल में कोई उतरता है तो ढोल नगाड़े नहीं बजते, बल्कि आंखें चुपके से इशारे करती हैं। और फिर क्या होता है, सुनिए।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म कश्मीर की कली से आपने अभी ये गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म दोस्ताना से।

रफ्तार में वो जादू है कि दिल ठहर जाता है, रफ्तार में वो जादू है कि दिल ठहर जाता है, जब वो सामने से गुजरते हैं तो समा ठहर जाता है। आइए इस मीठी सी तकरार और मोहब्बत की नोकझोंक को सुरों के इस खूबसूरत सांचे में ढालते हैं।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म सारंगा से अभी आपने गीत सुना। नजर का नजर से मिलना ही कमाल नहीं होता, नजर का नजर से मिलना ही कमाल नहीं होता, मोहब्बत में हर सवाल का जवाब नहीं होता। ये तो दिलों के तार हैं जो चुपके से जुड़ जाते हैं, इस प्यार की जादूगरी के आगे फिर कोई पहरा नहीं होता। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म कोहिनूर से ये गीत।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म संजोग से अभी आपने गीत सुना। ऐ मोहब्बत तुझसे वाकिफ करा गई, ऐ मोहब्बत तुझसे वाकिफ करा गई, वो खूबसूरत नजर हमें इश्क सिखा गई।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अभिलाषा से अभी आपने ये गीत सुना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं, जिस देश में गंगा बहती है फिल्म से, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में।

दोस्तों, हमराही कार्यक्रम से भी अब हमारा लौटने का वक्त आ गया है और इसी के साथ ही अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि 2 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बिल का मसौदा पेश किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। श्री अधिकारी ने बताया कि ये समिति 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। श्री अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि अनुसूचित जनजाति, कुर्मी और प्राचीन मूल समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम के केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से 2 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर रहेंगे। श्री चौहान असम के गुवाहाटी में बाढ़ से फसलों और गांवों में हुए नुकसान की समीक्षा करेंगे। इसके बाद श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर रहेंगे। मुंबई सीमा शुल्क अधिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अबुधाबी से आए 25 साल के एक यात्री को 2,38,00,000 रुपए मूल्य के लगभग 7 किलो गांजे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले आरोपी मोइन खान को एयर खुफिया इकाई ने खास जानकारी के आधार पर पकड़ा। नशीली दवा और मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मूज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। फीफा विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में अमेरिका के बॉस्टन स्टेडियम में जर्मनी और पैराग्वे के बीच मुकाबला जारी है। दोनों टीमें अभी 1-1 गोल

सुबह के 4:11 और 16 सेकंड हुए हैं। अरुणिमा कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। दोस्तों, ये दुनिया एक मेला है और यहाँ हम सब एक दूसरे से मिलते हैं, और अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हैं तो वो आपको दुआएं ही देगा। और जिसके पास आज के समय में बड़ों का आशीर्वाद और दुआएं हैं, उसके पास सब कुछ है।

गीता दत्त और उषा मंगेशकर की आवाज में फिल्म माँ बाप से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिंदगी है तो सुख दुख तो चलेंगे ही, सुख आए तो उसमें सहज रहिए और दुख आए तो उसमें बिना घबराए उसका मुकाबला कीजिए।

किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाज में फिल्म पाप को जलाकर राख कर दूंगा फिल्म से अभी आपने गीत सुना। आज की इस भागदौड़ भरी लाइफ में अगर कुछ फुर्सत के पल मिल जाएं तो कितना सुकून मिले ना दोस्तों। आइए सुनते हैं इस गीत के द्वारा कि सुकून कैसे मिले।

लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाज में फिल्म मौसम से अभी आपने गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अरुणिमा में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म बूट पॉलिश से।

आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ, हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ।

बिल्कुल दोस्तों, तकदीर भी तभी साथ देती है हमारी जब हम अपनी मेहनत करते हैं, और जब हमारा लक्ष्य यानी मंजिल साफ हो, निश्चित हो, तो हमारा पूरा ध्यान उसी सफ़र पर रहता है और फिर जिंदगी में भटकाव खत्म हो जाता है। आइए सुनते हैं नाग मंदिर फिल्म से लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ में ये गीत।

मुकेश की आवाज में फिल्म शोर से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिस तरह नदियां बिना कुछ इधर उधर देखे अपनी ही धुन में चलती रहती है, उसी तरह आपको भी अपने लक्ष्य के लिए बिना रुके हुए आगे बढ़ते जाना है।

जसपाल सिंह और साथियों की आवाज में फिल्म गीत गाता चल से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, कहते हैं कि दिल बार बार नहीं धड़कता, पर जब ये पुराने गीत और बीते दौर की यादें सामने आती हैं तो ये दिल एक बार फिर से बच्चा बन जाता है। तो चलिए, दिमाग के सारे दरवाजे बंद कीजिए और इस संगीत के सफर में दिल दे के देखो।

मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म दिल दे के देखो से अभी आपने गीत सुना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अंदाज से।

दोस्तों, जिंदगी के सफर का इसी तरह आनंद लेते रहिए और अरुणिमा कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण

0: समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम के केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि 2 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बिल का मसौदा पेश किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। श्री अधिकारी ने बताया कि ये समिति 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि श्री अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि अनुसूचित जनजाति, कुर्मी और प्राचीन मूल के समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से 2 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर रहेंगे। श्री चौहान असम के गुवाहाटी में बाढ़ से फसलों और गांवों में हुए नुकसान की समीक्षा करेंगे। इसके बाद श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर रहेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का भी दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। मुंबई सीमा शुल्क अधिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अबुधाबी से आए 25 साल के एक यात्री को 2,38,00,000 रुपए मूल्य के लगभग 7 किलो गांजे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। नशीली दवा और मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया है। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। इसके साथ ही पैराग्वे राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर गई है, जबकि जर्मनी विश्व कप से बाहर हो गई है। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। ब्राजील ने रोमांचक मुकाबले में जापान को 2-1 से हराया। अब रविवार को न्यूजर्सी के ईस्ट रदरफोर्ड में राउंड ऑफ 16 में ब्राजील का अगला मुकाबला आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati

सुबह के 5:11 और 10 सेकंड हुए हैं। भोर सुहानी कार्यक्रम में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सुबह की पहली किरण हमारे जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह देती है, और इसी के साथ अगर प्रभु का स्मरण हो जाए तो सोने पे सुहागा। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से भजन से, जो गाया है सुभाष जैन ने।

बीत गई जो रात अंधेरी, लाया सवेरा नई उमंग। बीत गई जो रात अंधेरी, लाया सवेरा नई उमंग। चलो सवारे अपनी सुबह, लेकर मन में एक नई तरंग।

आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में फिल्म रंगीला राजा से अभी आपने ये गीत सुना। दोस्तों, मांझी जिस तरह अपनी नाव को बिना रोके आगे बढ़ता रहता है, वैसे ही अपनी हिम्मत को कायम रखते हुए कोशिश कीजिए कि आप भी इसी तरह ही आगे बढ़ते जाएं।

महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज में फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान से अभी आपने गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। भोर सुहानी में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं चितालकर की आवाज में फिल्म अलबेला से।